गुरुआं पीरां फकीरां योध्यां बहादुरां दी धरती पंजाब। पंजाबी मां दे होनहार रखवाले पुत्तर जो अपने आप नूं नशियां विच बर्बाद कर रहे ने, उन्हां नूं चलमन सिंह टंडे दी कलम मिस पूजा दी जवानी कुछ इउं कह रही है।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
5: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300। दास ब्रैडफोर्ड, 7230300।
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
5: गन वर्गी बोलियां पावे कोई आशिक ना मर जावे।

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 3030।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइट इन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवियर्ड मास्टर। A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: मिलिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
5: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy-to-understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
6: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
7: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
6: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
7: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
8: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
9: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
8: चाचा केड़ा चाचा?
9: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
8: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
9: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
10: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज, ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 100.6 एफएम और 100.3 टू एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। और अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीथले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन, मिल्टन कीन्स, वेस्ट लंदन में आप सुन सकते हैं। और अगर एप्पल अप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पर सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज़ पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है वो हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके एंटरटेन करें। ओके, अल्लाह
0: अल्लाह हाफिज़। किधर से आ गया अभी तो शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
2: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। बहुत दो प्यार भरी आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। और इसके साथ ही दोस्तों वक्त हमें बता रहा है कि टाइम चेक का टाइम हो गया है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:16, यानी कि 11:16। तो आप दोबारा आ गई वापस या खुदा हाफिज पे ही अभी?
2: नहीं, मैं वापस आ गई।
0: आ गई हैं, अच्छा ठीक है। कितने बजे तक साथ है हमारा?
2: हमारा साथ 3 घंटे का है।
0: 3 घंटे का,
2: 1 o'clock तक है। 2 बजे तक, सॉरी, मैं 2 बजे जाऊंगी।
0: क्या कर रही हैं आप? 2 बजे तक है और 1 बजे तक जो है वो डेडिकेशन है
2: जी,
0: रिक्वेस्ट है। लेकिन 1 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। आप गीतों का शौक रखती हैं?
2: जी जरूर।
0: कभी गा सकती हैं? कभी गाया आपने?
2: नहीं, मैं शौक रखती हूँ लेकिन मैंने ऐसे ऑनलाइन जाके कभी नहीं गाया। लेकिन
0: और फिर गाती हैं आप
2: घर में?
0: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इधर भी कभी ट्राई कर लेंगे
2: जी।
0: तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जाने, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत सुनेंगे।
3: 24 hours a day।
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: तेरी गलियां
7: कुमी, ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
8: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
7: चाचा केड़ा चाचा?
8: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
7: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
8: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
9: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: बहुत ही प्यारा गीत था दोस्तों, आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया था। और अब चलते हैं जनाब अगले गीत की जानेब। और ये गीत आप सभी दोस्तों के नाम, चौधरी मुजफ्फर साहब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपके नाम। और आप भी बताइए किस किस ने फ़ोन किया आपको।
1: हीरा भाई ने कहा कि वो उनके दोस्तों के नाम पे भी एक अच्छा सा।
0: हीरा खान
1: जी, हीरा खान।
0: और
1: वाजिद भाई हडर्सफील्ड,
0: अच्छा
1: भी किया है।
0: अच्छा अच्छा, तो ठीक है, उनके नाम भी, गुलाम भाई आपके नाम, खान साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, आपके नाम भी करते हैं जनाब। और तमाम सुनने वालों के नाम करते हैं, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कमार सानू और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाजों में। और आप कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद आप इवेंट्स डायरी सुनेंगे जो ब्रेडफोर्ड और गिरदोनवा में जो कुछ हो रहा है वो आप जो है वो सुनेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। और एक स्पेशली हमारे जो लिसनर हैं उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि द सनराइज रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर्स क्लब मेंबर्स, सो जॉइन फ्री नाउ एट सनराइज डॉट रेडियो एंड कीप लिसनिंग फॉर मोर डिटेल्स। तो चलते हैं कमर्शियल की जाने, कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे इवेंट्स डायरी, उसके बाद आपसे मिलते हैं।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहने तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।
4: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मजीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: सुंदर नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ जाता है टाइम चेक का, तो चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: जी, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही है कि इस वक्त 11:46 हो रहे हैं। इसका मतलब है 11:46, और हमारा प्रोग्राम इसी के साथ आगे बढ़ता है, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
0: जो बाकी प्रोग्राम का हिस्सा है ज़रूर पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा, अच्छे से गाने चलाएंगे। और तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक सदाबहार पुराना गीत। नदीम मंसूर साहब, आपने पुराने गीत की फरमाइश की थी तो आपके नाम करेंगे, और आपके साथ साथ नदीम मंसूर साहब, आपके साथ साथ चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम करेंगे, तारिक जुल्फी साहब के नाम करेंगे, खान भाई के नाम करेंगे, और वाजिद भाई हडर्सफील्ड में उनके नाम भी करेंगे, और हीरा खान साहब आपके नाम भी करेंगे, और ग़ुलाम भाई, सफ़ीउल्लाह भाई, नवीद भाई और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम करेंगे। तो और इसके साथ साथ हमूना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से हैं, जो संदाज रेडियो के साथ मिलकर लाया गया। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूके में गाड़ियों के काम न करने, डाउन टाइम की वजह से बिजनेस को हर वैन के लिए रोज़ाना औसतन 1172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस शुरू किया है। रोडसाइड असिस्टेंस और ज़्यादा समय तक सर्विस की सुविधा से लेकर रियल टाइम में गाड़ी की खराबी का पता लगाने और भी बहुत कुछ। इनकी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके बिजनेस को बिना रुके चलने में मदद करती हैं। मर्सिडीज बेंज वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। स्टे ऑन द रोड रिपोर्ट, श्रेय देना ज़रूरी है। ये रिसर्च यूके के उन बिजनेसेस में 500 सीनियर फैसला लेने वालों के बीच की गई है, जहां वैन का इस्तेमाल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, तो अब चलते हैं जनाब अगले गीत की जानिब। चले जल्दी जल्दी क्योंकि खबरें आने वाली हैं
1: जी।
0: तो ये गीत मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना संडा रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। और हुमा खान जी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं?
1: जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज अक्षय कुमार की बर्थडे है और हम उसका कोई फिल्मों के गाने लगाते हैं जो हिट है।
0: अच्छा, अक्षय कुमार की बर्थडे है आज?
1: जी।
0: तो कितने साल के होंगे वो?
1: 25 साल का होगा।
0: 25 साल के?
1: 25 का होगा या 26 का होगा?
0: 25-26।
1: हाँ, लगता
0: है बूढ़ा। दोनों मिला लूं या 25 या 26 का है?
1: 25 या 26
0: लगता तो नहीं है, लगता तो वो कोई 50 साल या इस तरह कुछ लगता है, ऊपर लगता
1: है। हाँ, वो 60 साल का भी लगता है लेकिन वो 25 या 26 का।
0: अच्छा, लगता जवान है
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए हिट ऑफ द आवर स्टार्ट ही फिर कोई अक्षय कुमार की फिल्म से लिया हुआ गीत करते हैं जो बड़ा हिट हुआ हुआ, काफी बहुत हिट हुए हैं। लेकिन चलिए एक मैं अपने प्रोग्राम में चलाता रहता हूँ, वही चला देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हिट ऑफ द आवर का ये प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार।
1: हैप्पी बर्थडे।
0: हैप्पी बर्थडे। यस, तो चलते हैं। अक्षय कुमार की आज बर्थडे है, हुमा जी कह रही है उनकी बर्थडे है, और तो जनाब उनकी फिल्म का कोई गाना लगाएं। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और इंजॉय करते हैं। और मेरी तरफ से ये गीत आप सभी सुनने वालों के नाम करते हैं, अक्षय कुमार के अलावा आप सभी सुनने वालों के नाम।
2: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: जी इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 12:14 हो रहे हैं, इसका मतलब है 12:14 एंड हम इसके साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं
0: और कमर्शियल की जानिब बढ़ते हैं जनाब। कमर्शियल के बाद गुलाम भाई, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम गीत होगा, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम होगा और उसके बाद अब्दुल कीम साहब राइजिंग हॉल से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी होगा और आपके साथ साथ जनाब हमारे जो इस वक्त काफ़ी दोस्त काम कर रहे हैं और जिनमें हैं जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब और इकमाज मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अलादिता, उमेर, बाबर, इफराज, उनके नाम करेंगे और कुछ सहेलियाँ भी काम कर रही हैं जो इकरा जी सुनना चाहती हैं नजमा के लिए, इफ़त, नाजिया, मीदार, बीना, बुशरा, ताज़ीम, जायदा और साइमा के लिए। और बात हो रही थी जनाब अक्षय कुमार की बर्थडे की कि उनकी फिल्म का, उमा जी कह रही थी कोई गाना लगाएं, तो जनाब अक्षय कुमार की फिल्म का एक गुलाम अली की आवाज़ में जनाब गज़ल है वो प्ले करेंगे और जनाब वो मेरी प्यारी बहना सादिया जी जो हैं उनकी फेवरेट गज़ल है उनके नाम भी करेंगे और उनके साथ हैं आजरा बहन उनके नाम भी करेंगे और कमल साहब आपके नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद जनाब गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश, मैथ्स, ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
6: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
7: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
6: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
7: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
6: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: याद याद बस याद रह जाती है क्या गीत था क्या गजल थी आप दोस्तों के लिए पेश की और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कितना जल्दी के साथ जा रहा है फिर कमर्शियल आ गई
1: जी फिर से कमर्शियल
0: तो
1: है।
0: कमर्शियल के बाद अब मन कर रहा है कोई पंजाबी का गीत सुने
1: जी
0: तो जनाब शाजिया मंसूर की आवाज में पंजाबी का गीत होगा कमर्शियल के बाद तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब कमर्शियल के बाद दोस्तों मिलते हैं सुनते रहिएगा
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust. Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

दोस्तों, अभी आपने शाजिया मंसूर की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना। और जीत कौर बहना, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत जो है अक्षय कुमार की फिल्म से लिया हुआ गीत है, क्योंकि उमा जी कह रही है कोई और अक्षय कुमार की फिल्म का गीत लगाओ, क्योंकि उसकी सालगिरह है, तो जरूर लगाते हैं अभी जनाब। और एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है, फैंसी अ बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रश, टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर्स यू आर। प्ले नाउ एट सनराइज डॉट रेडियो एंड ज्वाइन द फ्री सनराइज लिसनर क्लब टू अनलॉक इवन मोर। तो जनाब ये है, अब बहुत सारी गेमें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें, तो सनराइज रेडियो का जो क्लब है उसमें ज़रूर शमूलियत कीजिएगा। और ग़ुलाम भाई, आपके नाम और आपके स्टाफ के नाम और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम, और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली सिकंदर अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं अक्षय कुमार की फिल्म से लिया हुआ ये गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू और अलका यग्निक की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि टाइम चेक का टाइम हो गया है, तो चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: जी, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 12:46 पास हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि
0: 12:46
2: पास हो गए हैं।
0: ये 12:46 पास, यानी कि फिर 12:46 यानी कि 12:46
2: यस।
0: तो ये हो गया टाइम चेक। तो अब कमर्शियल की जानिब चलेंगे। कमर्शियल के बाद सदाबहार एक प्यारी सी कवाली सुनाएंगे आपको, और वो होगी जनाब गुलाम भाई आपके नाम, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से आपके नाम, वाजिद भाई एडस्फील्ड से आपके नाम, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम, नदीम मंसूर साहब, तारी जुल्फी साहब, खान भाई और हीरा खान साहब और सफीउल्ला भाई और जनाब नवीद भाई और मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम, और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, तीसरा तो आरिफ अली गया हुआ पाकिस्तान, तो बिशारत अली, सिकंदर अली आपके नाम और दीगर जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुरानी कव्वाली, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
3: Sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
9: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
8: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
9: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
10: Official media partner, Sunrise Radio.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और जल्दी में चलते हैं गीत सुनते हैं क्योंकि वक्त जो है वो खबरों का आने वाला है। तो ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सन्ना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है।
1: जी, और हुमा खान आपसे मुखातिब है। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, अभी लाइव कॉल्स लेंगे
0: जी।
1: और सीमा जी इंतजार कर रही हैं, उसके साथ ही भाई अयूब
0: चौहान साहब भी इंतजार कर रहे हैं
1: जी।
0: तो ये सिलसिला चलेगा जब हम हिट ऑफ द आवर सुन पाएंगे, उसके बाद ये सिलसिला चलता है। तो ये प्रोग्राम का आखिरी आवर है जनाब, 2 बजे तक हमारा और आपका साथ है। और इस आवर में कोई डेडिकेशन नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल का सिलसिला है। अगर आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुनाना चाहें तो आप आइएगा। नंबर होगा 01274 30

0: 6666. तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर.
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने गाना बहुत ही प्यारा सुना और इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: 1:12 यानी कि 12:01, और जल्दी में चलते हैं कमर्शियल की जानिब, क्योंकि सीमा जी वो ब्रेक पे हैं और उनका टाइम बड़े नाजुक मोड़ पे है, तो जल्दी में चलेंगे कमर्शियल की जानिब और जल्दी वापस आएंगे ताकि फिर सीमा जी को सुन लें और अयूब चौहान साहब भी लाइन पे मौजूद हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सन्ना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और हमारे साथ हैं
1: हुमा खान।
0: तो दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है और लाइव कॉल्स में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीमा जी और उसके बाद अजीब चौहान साहब भी जुड़े हुए हैं। तो तालियों की गूंज में चलते हैं सीमा जी की तरफ, माजी जाते हैं सीमा जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम, कैसी है उमा? ठीक है?
1: ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
2: चले अच्छा है, आपका इंतजार भी खत्म हो गया, आज आप भी सुन लेंगे आवाज।
1: जी जी
0: चलिए, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है इन्होंने।
2: नहीं, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह
2: मेरा फेवरेट गाना लगा हुआ था ये भी जो।
0: हाँ मुझे पता, मुझे याद आ गई थी कि एक बार मैंने ये गाना लगाया था तो आपने फोन करके कहा था कि ये मेरा फेवरेट गीत है। जी जी जी जी,
2: चले मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने भी थोड़ा, वैसे यूजली पता मैं दुखी दुखी गाती, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा
0: अच्छा
2: रोमांटिक।
0: ये तो बहुत
2: रोमांटिक नहीं है, बस सॉफ्ट जैसे मैं गाने सुनती हूँ वैसे ही है, प्यार हमारा अमर रहेगा।
0: आहा क्या बात है, ये भी सोच भर रही है कि
2: चले मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सबको जो आएंगे जो हैं सबको अस्सलाम वालेकुम
0: जी,
2: क्योंकि टाइम कम है तो इस वजह से।
0: जी जी

0: थैंक यू।
1: वाह सीमा जी वाह, क्या गीत आपने गाया, क्या गीत गाया आपने,
2: बहुत खूब माशाल्लाह,
1: बहुत खूब, यस बहुत अच्छा,
0: टाइम देने के लिए,
1: गाना भी बहुत चुना आपने अच्छा,
2: मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद आई है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई,
0: थैंक यू जी, थैंक यू
1: थैंक यू सीमा जी,
0: याद रखें, चले बाकी भी वेट कर रहे,
1: ठीक है, क्योंकि आप आगे ब्रेक भी खत्म होने वाली है ना,
0: हाँ जी,
1: जी जी,
0: थैंक यू,
1: ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी सीमा जी, और क्या इन्होंने गीत गाया, सभी ने सुना और यकीनन आप सभी ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब हम तालियों की गूंज में खुशामदीद वेलकम जी इन्हों कहेंगे जनाब अयू चौहान साहब को। अयू चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक थे?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ मैं?
3: जी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है।
1: वाला हौला वाला कुवता जी, चलिए फिर सुनाइए, नदीम मंसूर की ब्रेक खत्म होने वाली है, चलिए ठीक है,
3: क्योंकि मैं
1: इन कामों में बड़े तेज हैं आप, फौरन समझ गए कि मैं ये कुछ कहने वाला हूँ।
3: चलो ले लूँ
1: ना, ऐसा बोले ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। ओए होए सदके जाऊं, और क्योंकि इस वक्त काम पे हैं अपने नदीम मंसूर साहब, तो इसलिए मैंने गुजारिश की अयूब चौहान साहब को कि भाई उन्हें पहले जाने दें, कि उनकी ब्रेक खत्म होने वाली है। अयूब अपने नदीम मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजनो बड़ी मुश्किल नाल बंदे नूं काबू कीता है, ओ ते काबू नहीं सी होंदा पिया।
3: कोई बात नहीं अच्छा। शुक्रिया उन्होंने बहुत
1: सही है, आपकी भी ब्रेक नजदीक लगी हुई होगी,
3: कोई बात नहीं है, अभी टाइम है मेरे पास।
1: चलिए फिर आपसे गीत सुन लेते हैं और फिर दो दो आत है यू चौहान से भी कर लेते हैं।
3: चलें ठीक है, ये एक गजल है जो सबकी नजर आपकी नजर करता हूँ।
1: जी जरूर जरूर।
3: दिल में उम्मीद का एक दीप जला कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो। अरे दिल में उम्मीद का एक दीप जला कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो। जो भी नाराज है एक बार उसे प्यार से मिल, जो भी नाराज है एक बार उसे प्यार से मिल, दिल की दूरी को जरा पास बुला कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो।

मुस्कान सजाई जाए, अरे अपने आंसू को जरा हंस के छुपा कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो। जिंदगी सिर्फ परेशान का किस्सा तो नहीं, जिंदगी सिर्फ परेशान का किस्सा तो नहीं, अरे हर लम्हे को खुशियों से सजा कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा

कोई खुशबू तेरे होंठों पे बिखर जाती है, कोई खुशबू तेरे होंठों पे बिखर जाती है। अरे

में इस अक्स को ला कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो। जब से देखा है तुम्हें दिल का ये आलम है।

0: से नाम सजा कर देखो अपनी दुनिया को, मोहब्बत से सजा कर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह, क्या बात है नदीम मंसूर साहब, क्या बात है, क्या गीत आपने गाया, गजल थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आवाज को सलामत रखे, और आप बड़ा मेहनत से काम भी कर रहे हैं और साथ में टाइम निकाल के लिए निकाला हमारे सभी सुनने वालों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे नदीम मंसूर साहब, क्या कहने जनाब, क्या कहने, और ढेर सारी तालियों के लिए। और दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, और यूं गए और यूं वापस आए। 24 hours a day.
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3535. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनलाइट रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और साथ में है
1: हुमा खान।
0: तो दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है और काफी देर से होल्ड पे हैं जनाब अजूर चौहान साहब। ढेर सारी तालियां उनके लिए। अजूर चौहान साहब एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई और उमा खान साहिबा। तो आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं।
0: थैंक यू सर।
2: आपने जो कहा मैंने तो मान लिया, लेकिन मैं तो लेट हो गया ना।
0: कोई बात नहीं, आप बातें नहीं करेंगे ना, आप बातें नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आ जाते।
2: बातें करने के सिवा तो मैं रह ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन बात है। आपको मेरी बातें सुननी होगी, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं वेंसडे को नहीं आता क्योंकि मैं को आप में हड्डी बनना नहीं चाहता होता।
0: ये मैं समझा नहीं,
1: कबाब कौन है और हड्डी
0: कौन है? हाँ ये मैं समझा नहीं।
2: बस को आप जो खूबसूरत गाने गा के गए हैं, खूबसूरत आवाज़ें।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: अच्छा, तो हड्डी में होना
0: सही है। और पीछे जावेद मीर भाई भी वेट कर रहे हैं।
2: नहीं उनकी कोई बात नहीं है, वो भी खूबसूरत उनकी आवाज़ है। तो मैं अगर तारीफ ही करता रहूंगा तो दो वहां पर ही बच जाएंगे।
0: सही है, इसलिए कहा था मुद्दे पे आ जाते।
2: अच्छा बड़ी जल्दी आपको मुझे इतना इंतजार करा के।
0: नहीं नहीं मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ।
2: अच्छा
0: हाँ,
2: कोई बात नहीं
0: है। मुझे टाइम नजर आ रहा है ना, मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी कह
1: रहा हूँ। पे रखा है ना, इसलिए कह रहे
2: हैं। तो चलो मैं सुना ही देता हूँ जो कुछ सुनाना है।
0: जी जी,
2: सुनाने को तो मेरे पास आज बहुत था, लेकिन चलो
0: भड़ास निकाल लें निकाल लें।
2: नहीं नहीं संडे को निकाल लें।
0: ठीक है, संडे मिलेंगे ना, फिर मजे से मिलेंगे।
2: कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी।
0: होए होए क्या बात है।
2: चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी।
0: वाह।
2: परेशान हो तुम भी परेशान हूँ मैं भी।
0: वाह।
2: चलो मैं कदे में वही बात होगी।
0: क्या कहने।
2: चिरागों को लो से सितारों को जोर तक, तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी।
0: वाह।
2: जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी।
0: हाय हाय क्या बात।
2: सदाओं को अल्फाज मिलने ना पाए, ना बादल गिरेंगे ना बरसात होगी।
0: हाय हाय क्या बात।
2: मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
0: वाह वाह क्या बात।
2: ये तो डॉक्टर बशीर बदर साहब
0: जी,
2: के
0: जी।
2: और अब मैं लतीफों की तरफ आता हूँ।
0: जी जी।
2: एक सहेली ने कहा, जब हमारी शादी हुई तो मैं हर सुबह अपने खावन को प्यार से जगाया करती थी। और अब दूसरी ने पूछा, अब वो मुझे डरते डरते जगाता है।
0: क्या बात है क्या बात है।
2: एक बदसूरत शख्स ने अपनी खूबसूरत बीवी से कहा, तुमने ये झूठी खबरें क्यों उड़ा रखी है कि मैं लाखों रुपए का जायदाद का मालिक हूँ। बीवी ने जवाब दिया, तुमसे शादी करने की आखिर कोई ना कोई वजह तो मुझे बतानी पड़ेगी।
0: अच्छा
2: एक और है, छोटा सा है। शोर, मैं ड्राइवर को नौकरी से नकार रहा हूँ, आज मैं चौथी मरतबा मरते मरते बच्चा हूँ। बीवी, उसको एक मौका और दो दो।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया।
2: अल्लाह बात है चौधरी फियाज साहब को और चौधरी मुजफ्फर साहब, प्लीज आप भी आया करें। मिशकाना देने का क्या फायदा।
0: ठीक है,
2: शुरू शुरू मैं भी रेडियो पर आना।
0: ठीक है, ये बातें संडे होंगी जनाब, संडे होंगी ये बातें। ठीक है, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जावेद मीर भाई को खुश आमदीद कहेंगे। जावेद मीर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जावेद मीर भाई
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी भाईजान कैसे हैं? ठीक है
3: अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक
0: तो भाईजान आप आज गाना सुनाएंगे हमें?
3: मैं आपको कुछ सुना दूंगा।
0: जी जी सुना दे।
3: पहले तो मैं गुलसफीना साहिबा और इस दुनिया में रही, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए,
0: आमीन।
3: उनके बच्चों और उनके रिश्तेदारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अफसोस होता है।
0: ठीक।
3: तो एक मुकेश का गाना है, हम छोड़ चले हैं महफिल को

0: भाई
1: जी मेरी जान, मुझे पता था आप की जो निगाह है ना वो क्लॉक की जानब होगी। मैं अगे हो माँ को कह रहा था कि फिक्र नहीं करो, ये मेरा भाई जो है ना समझदार भाई है,
2: हाँ,
1: और
2: कितने अजान का वक्त हो गया।
1: ये उधर जो है ना निगाह इन्होंने रखी होगी, और
0: क्या नाम है इनका जो आपके साथ
1: ये
0: है?
1: हुमा खान
0: उमा खान को
1: जी।
0: इनको भी बहुत बहुत सलाम और खुश आमदीद कहते हैं जनाब
2: जी।
1: तो आवाज आ गई इनकी, जजाक अल्लाह इन्होंने कहा।
0: हाँ जी, हाँ जजाक अल्लाह कहा उन्होंने। किया
1: पता नहीं भूख लगी है इनको या क्या है, आज
0: नहीं,
1: कोई
0: आस्ता
1: स्लो
0: आस्ता
1: बोल रही है
0: आस्ता
1: ना,
0: आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे
1: स्लो
0: ना,
1: बोल
0: जब
1: रही है जी।
0: नया नया हो ना इंसान
1: हाँ
0: तो इस
1: सही
0: तरह
1: है,
0: ही होता है।
1: सही है,
0: जी
1: सही
0: जी हाँ, आस्ता आस्ता ठीक हो
1: है।
0: जाएंगे।
1: ठीक है मेरी जान, बहुत
2: बहुत
1: शुक्रिया
2: बहुत
1: आपका।
2: शुक्रिया,
0: आपका भी बहुत
1: अल्लाह आपको
0: शुक्रिया।
1: सलामत रखे।
0: अल्लाह
2: अल्लाह
1: अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह
1: ढेर सारी तालियां जनाब जावेद मीर भाई के लिए, और पाकिस्तान से जुड़ गए हमारे साथ चौधरी फरियाद साहब। लेकिन क्या है कि वक्त हो चुका है जोहर की अजान का, और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
3: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।
4: Oh.

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी सामीन, अभी आपने जहर की अजान सुनी और इसके साथ ही वक्त जो है वो हो रहा है कमर्शियल ब्रेक का, तो चलेंगे टाइम चेक कर लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों 1:44 हुआ चाहते हैं, यानी कि 1:44, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब हमारे साथ पाकिस्तान कश्मीर जरूरी से चौधरी फरियाद साहब, तो मिलते हैं उनसे कमर्शियल के बाद।

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
5: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंडना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
7: ऋषि's vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
8: 24 hours a day.
6: जी समीन, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और साथ में
9: हुमा खान
6: और जनाब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने चौधरी फरियाद साहब कश्मीर पाकिस्तान जुड़ी से ढेर सारी तालियां उनके लिए चौधरी फरियाद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
9: अस्सलाम वालेकुम व
10: रहमतुल्लाहि
6: व बरकातुहू
10: जी बिस्मिल्लाह हां
6: तो
10: बिस्मिल्लाह
6: सलाम अलैकुम जी सर पहले ये बताइए कि आपकी सेहत कैसी है
10: सेहत तो अमर भाई बस आपकी ये समझा कि आपकी दुआओं की सर जरूरत है
6: हम तो हर वक्त आपके लिए दुआ करते हैं अपने भाई के लिए हम तो हर वक्त दुआ करते हैं अल्लाह आपको शफा दे और किसी का अल्लाह मुताज न करे आपको लंबी उम्र दे आपको सेहत वाली दे हमारी दुआएं आपके साथ हैं तो भाभी कैसी हैं उनकी कुछ सेहत बेहतर हुई कि उनकी भी ऐसे ही है
10: वो तो मेरे ख्याल में थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं
6: चलो शुक्र
10: कुछ पता चला था हमारा एक बेटा इधर आया हुआ था ना वो मेरे साथ तीन चार हफ्ते लेकर गया था वो माँ के पास पहुँच गया तो माँ की सेहत ठीक होगी
6: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सही है तो आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी आम आदमी का मैंने पूछा है कि ठीक ही होंगे ठीक ही होंगे ये अगर मेरी भाभी सुन रही है अगर भाभी मेरी सुन रही है तो भाई फिर मैं आपकी सेहत का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ जो कुछ आपके साथ होगा ना वो फिर मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ ना मेरी दुआएं काम करेंगी
10: अमर भाई
6: जी
10: अमर भाई बात ये है कि हम थोड़े ले दौर के तो नहीं है ना
6: हाँ वो तो
10: हमारे दौर में जरा मियां भी करते थे कुछ सोच कर करते थे इधर उधर से घुमा कर
6: अच्छा ठीक ठीक है
10: ये बच्चे को मुखातिब कर दिया
6: ये आदतें ये आदतें
10: वो तुम अपनी माँ को ये कहना वो कहना
6: हाँ ठीक है मुराद अब ये आदतें छोड़े बदले ये आदतें
10: जी जी तो बदल गई है
6: सही है सही है
10: अमर भाई एक
6: जी,
10: बात है ये जो मियां बीवी का रिश्ता होता है ना ये सीरियस बात है ये बहुत बड़ा रिश्ता
6: बहुत अनमोल रिश्ता है
10: एक दूसरे का ख्याल
6: बहुत अनमोल रिश्ता है अगर कोई समझे तो अगर मियां बीवी में मोहब्बत प्यार है तो ये दुनिया जो है किसी जन्नत से कम नहीं और अगर जनाब फिर वो हो ना कि परवाह नहीं है कि हाँ तो फिर समझो जन्म है बिल्कुल सही है सही वैसे वैसे नहीं बोलती है लेकिन उमा खान वैसे बहुत कम बोलती है अब बहुत जल्दी बोल रही है इस मसले में
10: ये बात उनको समझ आ गई है
6: इसीलिए तो उमा खान की वजह से तो आप उर्दू में बात कर रहे हैं कि वो पंजाबी समझती है ना
9: जी, बहुत बहुत
10: जी, मैं उनके लिए मैं एक दो शेर भी उनके लिए उर्दू में पेश करूंगा
6: वाह जी वाह क्या बात है फिर तो कमाल हो गया जनाब
10: अमर भाई एक मसला भी है ना कि किसी औरत ने उसके खामद ने ना एक शेर भी है मैं कभी आपको सुनाऊंगा कि उसके खामद ने ख्वाब में पानी मांगा तो वो गिलास लेकर खड़ी होगी तो वो तो ख्वाब में था ना सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा वो सराहने खड़ी थी तो उसने पूछा क्या बात है तो कहने लगी आपने पानी मांगा था तो उसने बोला मुझे तो कोई याद नहीं शायद ख्वाब में और वो भी उसने अपनी माँ से पानी मांगा था वो इसका मुझे वो शेर मैं अभी सोच रहा हूँ आपको अभी सुना दूँ कि गजल वजी सी अद्धी रात वाली मेरे खामंद ने मंगया आप देना मैं दस कटोरा ले खली ना उसे मंगया ना मैं जवाब देना ये बजर होंदी नू पीती हो सपीर बख्शा उदे पीते दा रब सवाब देना कि ये जो है ना मियां बीवी जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं
6: सही, सही।
10: तो इसमें अच्छाई है और उनके जो जिंदगी है वो अच्छी गुजरती है
6: अच्छा
10: मुझे पता है क्या मैं ये सिर्फ आपने नहीं बोला और भी हर बंदे ने बोला है कि शायद ये बंदा दूर दूर रहता है ऐसी बात नहीं है
6: नहीं मुझे पता है नहीं मुझे पता है आप अपने मेरी भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं वो तो दिल लगी कर रहा था आपके साथ जी
10: जी जी चलो मैं आपकी
6: लेकिन एक बात है कि भाभी आपसे ज्यादा भाभी आपसे करती आपका ख्याल रखती इसमें कोई शक नहीं है
10: जिस तरह मेरी जिंदगी गुजरी है ना अमर भाई मन मानियों में मेरी कोई और बीवी होती तो मुझे काम दरिया में
6: इसीलिए मैंने कहा कि भाभी आपसे ज्यादा ख्याल रखती है आपका सही है अच्छा
10: मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है ऑटो और से गुजारी है
6: वो तो पता है
10: कहते ना ये
6: वो तो हमें पता है
10: मैं वो आदमी नहीं हूँ
6: जी जी आपकी सारी स्टोरियां मुझे पता है जनाब तो इस बात को यही अभी रहने देते हैं और आपसे कुछ सुनते हैं कहीं ऐसा ना हो के बातों में लगे रहें और टाइम खत्म हो जाए आपसे कुछ सुना ना
10: जी जी चलो तो अमर भाई आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम है
6: जी
10: मुजफ्फर साहब की पूरी टीम को मेरा सलाम है परवेज भाई की पूरी टीम को मेरा सलाम है और जो मेरी टीम है उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम है
6: सही
10: तो एक दो शेर में उमा खान के लिए उर्दू में पेश करता हूँ
6: जी जी जरूर
10: मेरे ख्यालों में आने वाले मेरे ख्यालों में आने वाले अगर तू सामने होता तो बात होती
6: वाह
10: तेरी कसम अगर तेरा दीदार होता फौरन गमों से मेरी निजात होती
6: वाह क्या बात है
10: चांद चौदहवीं रात की चांदनी में पिया तुझसे अगर मुलाकात होती वल्ला मेरे नसीबों पे आज बादल करती रह सकी है सारी कायनात होती
6: वाह वाह क्या बात है क्या बात
10: ये देखते हैं कि वो बेवफा तुझे खबर है क्या वो बेवफा तुझे खबर है क्या तेरी याद में कितना रो चुका हूँ एक दिल ही था सनम मेरे पास तेरी जिस में वो भी खो चुका
6: वाह वाह वाह वाह क्या बात है बहुत
10: चश्मा हूँ ये फिरता बीज अपनी बर्बादी का बोल चुका हूँ दमे आकर के अब तो बिस्तरे मर पर सो चुका हूँ
6: वाह क्या बात है क्या बात
10: एक दो शेर आपकी नजर और आपकी महफ़िल की नजर
6: जी जी
10: इमा खान क्या कहते हैं
9: बहुत बहुत शुक्रिया बहुत पसंद आया आपका शेर
6: थैंक यू
10: बहुत बहुत शुक्रिया
6: थैंक यू
10: चलो मुझे सिला मिल गया आपको शायरी पसंद आई
6: जी जी
10: तो अमर भाई पंजाबी कहते ने के वादी वश्ते जुनून अंदर
6: हाय हाय हाय हाय हाय क्या
10: वादी वश्ते जुनून अंदर हर दम घुमया मेरा ख्याल रहंदा जहां दा विछड़िया सज्जन सुल्तान में तू साया गर्दिशां दा नालो नाल रहंदा
6: वाह वाह क्या बात है क्या
10: दागे फुरकत दे इधर जे दागे फुरकत दे इधर जे तीर सीने आया कलब ते रंजो मलाल रहंदा कदों आ मिलते दिलबर आन बादल और मेरा किस्मत दे नाल हर दम सवाल रहंदा
6: वाह वाह क्या बात है चौधरी साहब क्या बात
10: आखिरी शेर आखने ने के इजर फराग दा क्या दसा इजर फराग दा क्या दसा बागे सुकन दे बादे बहार गुमै
6: टूट
10: गया तखयल दा साजीना मेरिया गीतां दे शौकी कमार गुमै
6: वाह वाह क्या बात,
10: गुम बेखुदी दे विच ऐसा,
6: आहा
10: गुम बेखुदी दे विच ऐसा दिल बिस्मिल दाचेन कर गुम है बक्सी बादल नो ताकत सुखन जिसने को नहीं लबदा वो अमर मेरा प्यार गुम है।
6: ओ हो क्या बात है, बहुत खूब सर चौई साहब, कमाल होगी तुहाडा, बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तुसी सेहत भी ठीक नहीं ते फिर टाइम कढ के आंदे हो प्रोग्राम में ते तुहाडा जिन्ना भी शुक्रिया अदा करा उतना कम है ते इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी। अपना ख्याल रखियो ते दुआएं याद रखियो सर।
10: शुक्रिया।
6: ओके सर,
9: अल्लाह
6: हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कमाल कर दी चौधरी फिजा साहब ने, कमाल की, क्या कमाल की शायरी की और क्या जनाब। और इसी के साथ ही हुमा जी,
9: जी
6: प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो गया,
9: खत्म हो गया जी, पता जी भी नहीं चला कहाँ गया टाइम।
6: हाँ सही है, तो आप इजाजत ले ले
9: जी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी।
6: बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मुझे भी आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात और हुमा खान की मुलाकात
9: इंशाल्लाह
6: जी कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

हैं इतनी कंफ्यूज्ड? मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ। कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।

राइट, आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, ये आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रबता हमसे रबता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886545970, Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मजीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है। तो मैं आपसे माजरा चाहता हूं, अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मजीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से जिंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से है जो सनराइज रेडियो के साथ मिलकर भेजा गया है। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होती, ये आपकी रुजय रोटी और आपकी साख होती है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैन्स ने अप टाइम प्रॉमिस बनाया है जो बिजनेस के लिए कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि 24 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, वर्कशॉप के बढ़े हुए घंटे और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग। असल में इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल में रखने और अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए चाहिए। मर्सिडीज बेंज वैन्स हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू। मर्सिडीज बेंज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस, पत्राता के नियमों, गराई की कंपैटिबिलिटी और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विसिंग करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.

0: अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हो। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उनसे आर्ग्यूमेंट ना कर लें या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो।
1: दोस्तों, मैं कुलदीप माणिक,
2: ब्रॉडकास्टिंग टू द एशियन कम्युनिटी 24 आवर्स अ डे, दिस इज सनराइज रेडियो यॉर्कशायर।
1: एक गीत जरा है, एक गीत है अपने बगानियां दा, ओदों पता लगा
3: न्यू सेंसर एट 4 द मेट्रोपॉलिटन पुलिस हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ फॉरेन डोनेशन लिस्ट। लास्ट वीक इट वाज क्लेम्ड

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं।

हैं क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये ज़हन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

तो लीजिए हम आपको दिए देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदड़ी तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए, लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा, मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है, मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है, आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ, स्टे ट्यून्ड।

0: AG the gangster.
1: Right, oh, ladies and gentlemen, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एख्तिताम. ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एख्तिताम हुआ चाहता है. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में. अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का. क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं. अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है. उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता. अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रुफका और अपने अजीजो अकारब का ख्याल रखा कीजिए. आपसे मुलाकात होगी अगले शो में. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापां ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें। सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
1: The classic hits. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

तो खुदा ने पाला, कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है, अल्लाह सब

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट स्वीट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।

कुछ मुस्कुरा के सा किया, चूम के कुछ संग के कुछ मुस्कुरा के सा किया, इनकार कर दे पर जरा नजरा मिला के सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, ते फिर मेरी याद जो भूल जा फड़ा के

0: चढ़ गया वे कलम रोड।
1: तेनु लक दे एक सुनावा
0: सुना।
1: तेनु दफ्तर हुने पचावा
0: सच्ची
1: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई
0: ओ वाह।
1: तेनु लक दे एक